को खरीद में कैशबैक तथा शेयर शॉट गिफ्ट वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैजिक डिशवाशर में वॉशिंग टैबलेट एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन और फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद कर सकिन्छ।

0: Consumer, this is me, and I work for Michelin, worldwide franchise, India to Michigan, and I'm here to tell you what I have to offer. Light truck passenger, tires, they're awesome, super, wonderful, excellent, amazing. Number one rule, though, we're all about safety. When I go in transit, I'm safe there and safe back. Spread out the word from the roads to the racetrack. Michelin, Michigan, Michelin,
1: safety,
0: Michelin, Michelin, Michelin,
2: world's number one tire brand.
3: Classic Techo 60th anniversary offer. Jatima Sayo, Ketima Payo. Budget for package for Paike Rosaiko. Abo Internet TV, the Wi Fi 6 router Pani, Ketima Payinsa. Classic Techo Kune Pani Plan Kharidma Hare Kapta. Teen Zanalai, Teen Mahina Internet Bonus. Ramasik Ek Zanalai, Ru Bara Hazarko Internet Bonus. Samparka 980-100-4477. Classic Tech. जतिमा चाहियो त्यतिमा पाइयो।
4: के तपाईँ ढाड, कम्मर, घुँडा, गर्दन दुख्ने समस्या, युरिक एसिड, बाथ रोग, नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ?
5: यस्ता समस्याको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आजै सम्झनुहोस्।
4: हाम्रा सेवाहरू
5: ओपिडी सेवा,
4: विशेषज्ञ ओपिडी सेवा,
5: निशुल्क औषधि वितरण,
4: सशुल्क फार्मेसी सेवा,
5: फिजियोथेरापी सेवा,
4: अकुपंचर सेवा,
5: योग परामर्श सेवा,
4: क्रियाकल्प सेवा,
5: पूर्व कर्म पञ्चकर्म सेवा,
4: छार सूत्र सेवा,
5: जलौका सेवा,
4: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू,
5: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म।
4: विस्तृत जानकारीका लागि
5: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, बागमती करिडोर, कैरीगाउँ, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-4110-6690, 98514-2463।

सङ्घर्ष गरे शत्रुसँग हाँसी हाँसी मरे। देश बनाउँदा मणिरामले मृत्यु वरण गरे। छैन त्यसको लेखा जोखा।